संत चोखामेळा की भक्ति रचना आप सुन रहे थे उदयन काळे के स्वर में। कार्यक्रम में अब हम सुनाने जा रहे हैं संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है मालती पांडे ने।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था मालती पांडे ने। कार्यक्रम में आप सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी ने गायी हुई एक भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी ने गाई हुई इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त करते हैं।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे रागम 24/7 DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग विलासखानी तोड़ी पर ख्याल सुनवाएंगे. कलाकार हैं देवांजन चट्टोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अभिषेक चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Bilashkhani Todi. Our artist is Debanjan Chattopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Abhishek Chattopadhyay and on the harmonium is Amitava Bhattacharya.

Sare gaba ni da mare gare ne da ni

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिलासखानी तोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे देवांजन चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अभिषेक चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपको राग बैरागी पर गिटार वादन सुनवाएंगे। कलाकार हैं रतन भारती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अशोक मुखोपाध्याय।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग बिलासखानी टोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज देवांजन चट्टोपाध्याय। अकंपनिंग हिम ऑन द तबला वॉज अभिषेक चट्टोपाध्याय एंड ऑन द हारमोनियम वॉज अमिताभ भट्टाचार्य। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट We now present a Hindustani instrumental recital. Listen to a guitar recital in the rag Bairagi. Our artist is Ratan Bharati. Accompanying our artist on the tabla is Ashok Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी पर गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे रतन भारती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अशोक मुखोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a guitar recital in the Raag Bairagi. Our artist was Ratan Bharati. Accompanying him on the tabla was Ashok Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित जसराज का गायन. लीजिए सुनिए राग भीम पलास. विलंबित बंदी एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं तन दीनो मन दीनो. द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं तुम मोरी मोतिन लर तोरी. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग वोकल रिसाइटल बाय पंडित जसराज. लिसन राग भीम पलास. विलंबित बंदिश सेट टू एक ताल. बोल तन दीनो मन दीनो. द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल. बोल तुम मोर मोतिन लर क्यों तोरी.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था राग भीमपलास। तबले पर संगत कर रहे थे केदार पंडित और वायलिन पर विशी कला रामनाथ। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित जसराज प्रस्तुत कर रहे हैं राग मियां की मल्हार। विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं बाबा तोपे बरसत करीम रहीम। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं घन गर्जत बरसत बूंद बूंद।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग भीमपलास। अकंपनीइंग हिम ऑन तबला केदार पंडित एंड ऑन वायलिन विदुषी कला रामनाथ। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम पंडित जसराज प्रेजेंट्स राग मियां की मल्हार। विलंबित बंदिश सेट टू एक ताल। बोल बाबा तोपे बरसत कम रहीम। द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल। बोल घन गर्जत बरसत बूंद बूंद।

0: ये था राग मियां की मल्हार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे पंडित जराज का गायन। तबले पर संगत कर रहे थे केदार पंडित और वायलिन पर थी विदुषी कला रामनाथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वाज राग मियां की मल्हार। विद दैट वी कंक्लूड वोकल टाइटल ऑफ पंडित जसराज। Accompanied him on tabla, Kedar Pandit, and on violin, Vidushi Kala Ramnath. This was the contribution of A.R. Mumbai.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित का गाया राग भोपाली. मध्य लय ख्याल छप ताल में निबद्ध है और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present for you a vocal recital by Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit. He first presents Rag Bhopali, in which you will hear a composition set to Madhyalaya Jhaptal, followed by a composition set to Dhrut Teental. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on Sarangi by Ghanshyam Sisodia.

0: अभी आप पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित का गाया राग भूपाली सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने। और लीजिए आप सुनिए राग शंकरा। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी घनश्याम सिसोदिया ने।
1: दैट वॉज राग भूपाली कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit next presents Rag Shankara, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Tilbatal, followed by another composition set to Drut Tintal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Ghanshyam Sisodia.

0: अभी आप पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित का गाया राग शंकरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग शंकरा एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित। ही वॉज अकंपनीड ऑन द तार बाय विनोद पाठक एंड ऑन द सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर का ध्रुपद गायन. प्रस्तुत है राग तोड़ी. चौताल में निबद्ध ख्याल के बोल है तोड़ी रागनी आलाप गावत. उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे हैं माणिक मुंडे. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट ध्रुपद रिसाइटल बाय उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर. ही प्रेजेंट्स ध्रुपद इन राग तोड़ी सेट टू चौताल. बोल तोड़ी रागनी आलाप गावत. ही इज अकंपनीड ऑन पखवाज बाय माणिक मुंडे.

ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये था राग तोड़ी। अपना ध्रुपद गायन जारी रखते हुए उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर और प्रस्तुत करते हैं राग मधमात सारंग। शूल ताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल है तुम रब तुम साहेब। दिस इज रागम डीटीएच।

ये था राग मधमाद सारंग। आप सुन रहे थे उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर का ध्रुपद गायन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे माणिक मुंडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। यू आर लिसनिंग टू ध्रुपद रिसाइटल बाय उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर। ही वॉज अकम्पनीड ऑन पखवाज बाय माणिक मुंडे। This was a contribution by All India Radio, Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग बेहाग पर ख्याल. कलाकार हैं विश्वरूप पाल. आपके साथ तबले पर हैं सुशांतो बंदोपाध्याय और हारमोनियम पर हैं पिंटू रॉय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग बेहाग पर ख्याल. कलाकार हैं विश्वरूप पाल.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Khayal in the Rag Bihag. Our artist is Bishwaroop Pal. Accompanying our artist on the tabla is Sushanto Bondopadhyay and on the harmonium is Pintu Roy. Listen now to Khayal in the Rag Bihag. Our artist, Bishwaroop Pal.

0: You were listening to Khayal in the Raag Behag. Our artist was Bishwaroop Pal. Accompanying our artist on the tabla was Sushanto Bondopadhyay, and on the harmonium was Pintu Roy. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a violin recital. Listen to the violin in the Raag Durga. Our artist, Tarun Kumar Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla is Debjit Bondopadhyay. Listen now to the violin in the Raag Durga. Our artist, Tarun Kumar Chakraborty.
1: Hindustani Shastri Sangeet ke tahat, abhi aap Raag Behag par khayal sun rahe the. कलाकार थे विश्वरूप पाल. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुशांत बंदोपाध्याय और हारमोनियम पर थे पिंटू रॉय. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग दुर्गा पर वायलिन वादन. कलाकार हैं तरुण कुमार चक्रवर्ती. आपके साथ तबले पर हैं देवोचित बंदोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग दुर्गा पर वायलिन वादन. कलाकार हैं तरुण कुमार चक्रवर्ती.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग दुर्गा पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे तरुण कुमार चक्रवर्ती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवोचित बंदोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a violin recital in the Rag Durga. Our artist was Tarun Kumar Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla was Deepjeet Bondopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: यह आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुमित सिंह पदम द्वारा सितार वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय सुमित सिंह पदम।
0: सुमित को संगीत के प्रति प्रेम और निपुणता अपनी तीन पीढ़ियों पुरानी पारिवारिक परंपरा से विरासत में मिली है। आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार उनके दादा श्री सोहन सिंह पदम एक उत्कृष्ट संगीतकार होने के साथ साथ तंतु वाद्य यंत्रों के सिद्धस्थ कारीगर भी थे। उनके पिता श्री जसवीर सिंह पदम जो सितार और तबला वादन के दिग्गज हैं उनके प्रथम गुरु बने।
1: अलोंग विद लर्निंग फ्रॉम हिज फादर Sumit is learning sitar under Guru Shishya Parampara from Pandit Dr. Harvinder Kumar Sharma, a top-grade artist of Akashvani and an acclaimed sitarist carrying the generations-old legacy of his guru, Ustad Vilayat Khan Sahib of Imdad Khani Gharana.
0: Akashvani ke A-grade kalakar Sumit लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर रहे हैं और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
1: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include संगीत रतन सम्मान, कला निधि सम्मान, स्वर साधक सम्मान एंड राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान।
0: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वे अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
1: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi and taal kachehri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's reference panel of artists.
0: Aaj ke karyakram mein Sumit Singh Padam apne vaadan ki shuruaat राग रागेश्वरी से कर रहे हैं जिसमें आलाप जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट सुमित सिंह पद्म बिगिंस हिज रिसाइटल विद राग रागेश्वरी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्याम लाल और साथी का शहनाई पर बजाया राग आभोगी। विलंबित गत एक ताल में एवं द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
2: दिस इज रागम। टुडे इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट यू शहनाई रिसाइटल बाय श्याम लाल एंड पार्टी। रिसाइटल इज इन राग आभोगी। विलंबित गत इज इन एक ताल एंड द्रुत गत इज इन तीन ताल।

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। ये था शहनाई पर बजाया राग आभोगी। कलाकार थे श्यामलाल वसाथी। और आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली हुसैन वसाथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री।
1: दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल इन राग आभोगी रिसाइटेड बाय श्यामलाल एंड पार्टी। वी नाउ प्रेजेंट शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद अली हुसैन एंड पार्टी इन राग बागेश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली हुसैन व साथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री। रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।
1: यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद अली हुसैन एंड पार्टी इन राग बागेश्री। रागम 24/7 DTH Anytime Indian Music। दिस प्रोग्राम वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन. कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल. राग है हमीर. विलंबित खयाल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं जाग रही सगरी रतियां. तीन ताल में निबद्ध द्रुत खयाल के बोल हैं कैसे घर जाऊं लंगरवा. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलीकर. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग हमीर. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलीकर ऑन द वॉयलिन.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे शाश्वती मंडल पॉल से राग कौंसी कान्हड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं राजन के महाराजा। तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल, यू विल लिसन राग कौंसी कान्हड़ा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थी शाश्वती मंडल पॉल। संगत कलाकार थे तबले पर सलीम अल्लाह वाले और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलिकर। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलिकर ऑन द वॉयलिन। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है काज मोरे बन आवे और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Ustad Gulam Sadiq Khan. First listen to Rag Bairagi. The Vilambit Gat is set to Ektal. The words are Kaj More Banave and Drut Gat is set to Teental. He is accompanied by Nawab Ali Khan on Tabla and Sajjad Ahmed on Harmonium.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग मेघ। मध्य लय झपताल में निबद्ध है। बोल हैं गर्जे घटा घन। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बैरागी बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। नाउ लिसन टू राग मेघ। द मध्य लय गत इज सेट टू झपताल। The words are Gharje Ghata Ghan.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मेघ बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। ही वाज अकंपनीड बाय नवाब अली खान ऑन तबला एंड सज्जाद अहमद ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए विदुषी मंजरी अलेगावकर के स्वर में संत भागाबाई की रचना, संगीतबद्ध किया है रविंद्र खासनीस ने।

अभी आप सुन रहे थे संत भागाबाई की रचना विदुषी मंजरी आलेगावकर के स्वर में, संगीतबद्ध किया था रविंद्र खासनीस ने। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है बबनराव नावड़ीकर के स्वर में, रचनाकार है संत नामदेव महाराज।

श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना बबन राम नावड़ीकर के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम की अगली रचना समूह स्वर में।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में ए रचना। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए नारायण स्वामी की भक्ति रचना, जिसे गाया है सुधा मल्होत्रा ने, संगीत दिया है मधुकर गोळवलकर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा के स्वर में नारायण स्वामी की भक्ति रचना। संगीतकार थे मधुकर गोळवलकर। अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है चंद्रकांत काळे।

आप सुन रहे थे चंद्रकांत काले के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है माधुरी ओक के स्वर में।

यह भक्ति रचना आप सुन रहे थे माधुरी ओक के स्वर में। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। अब सुनिए एन के बेहरे की रचना समूह स्वर में।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आरती ठाकुर के स्वर में संत तुलसीदास की रचना। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में संत एकनाथ महाराज की रचना। संगीतबद्ध किया है डीवी करंदीकर ने।